मटे अभिमान साध कसा पलटे सो ज्ञान साध कसम बुझे प्रभु नेरा सासा सब होतन बेरा साध कसा पाए नाम रतन साध कसंग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रमा सुमानी साध कसंग गोचर मिले साध कसंग सदा पर फुल साध कसंग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संगो सब की